आपके ही हिटियात मैं ही हिटियात। हेतु तो दानी ना रिद्म है लाइव इफेक्ट।